जय गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय जय जय सर्वप्रथम आप सब हाथ जोड़ी स्वामी श्री स्मृति साथे श्लोक नु गान करिए